0: Ya chokpa na ba ti na chamdani ng chi dam chinsga ni na tanga men ta te lama chesang chik lang vi shangba la ser gunu ge ser gende san shi nang ju yel
1: Aro renche
2: ama ka du diri mo
1: अरे को ट्रांसफॉर्म मानखन ने वाले खतो का थन रहता ng थाकर तो योरा मा सवा छे का साखा ना वयो या
2: अमा अमा ता सो सो सो ओले चो रे को ट्रांसफॉर्म मानखन ना ता जिया को या ता छमास रिया
1: ओ हरे को ट्रांसफॉर्म मानखन ता शाग जी चगेरा दव न ता मर गैंग को निगर तेज सो मत चिख चिज ग साथा या न गैमो सुंग दखते ना केनी अर्धक चिज जो नो चो मखसा से के चोच
3: चेतिरा ता मर के खरमो थेम केनी मारम बाप तुम नोरक
2: अमा

0: ngirgin ge lhop tik ge thablam se gon on da mo ge ge lang je ge khog ge sa sho so so ge jo da girgin ge lir kan tan da ni lu ma pong go yo ni tian chen ding ni thana chi nyam nyong ran da si ge phan sam so pa yo ni na mo girgin ma pon de jan ri a cherang chu ge ji ran ge lhop tik ge thablam la su kan de ji jan ri so na yang chu ding ni thana a da dar khup ge chu girgin ge lir kan tan de sa shi yo no girgin am bai na ran da dan di sho na de ji phan chen lo jong ge ma po ri yo ge di jang ge na mo ge ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱤ ᱞᱤᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚᱡᱩ
1: 도컴 세르타 시바 서리용의 총다 다트가 슬롬정거 뜨거 아 다디 스타용의 슬롬정거 게르근즈니리 총레르니르시리용요 데스타와 연제죠 아 대연락 대연송디 다그나 뜨거니 레르니르 이노티 초트기나 아 땅로 롱오르지나 로니스슴체 텐장고르메크다 다로 뇽뇽르지나 뜨거 다감니로
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ᱛᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱡᱤᱜᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥᱟ ᱠᱷᱟᱢ ᱫᱮᱨᱜᱮᱨᱮ ᱠᱷᱟᱢ ᱫᱮᱨᱜᱮ ᱞᱟ ᱡᱤᱜᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱜᱤᱱ ᱟᱱᱫᱤ ᱥᱞᱚᱯᱪᱩᱝ ᱠᱚ ᱥᱚᱵ ᱢᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱞᱚᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱞᱚᱯᱪᱩ ᱥᱮ ᱯᱟᱨᱮ ᱥᱞᱚᱯᱪᱩ ᱥᱮ ᱯᱟᱭᱮ ᱣᱟᱨᱠ ᱯᱨᱤᱱᱟ ᱛᱤᱨ ᱠᱟᱯᱥᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱪᱩ ᱠᱚ ᱯᱟᱭᱨ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱟᱱ ᱨᱮᱜᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱜᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱟᱢᱫᱚ ᱵᱚᱥ ᱠᱟᱪᱟ ᱡᱤ ᱜᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱟᱢᱫᱚ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱱᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱟᱪᱟ ᱛᱮᱱ ᱨᱟᱡ ᱜᱤᱨᱤ ᱫᱮᱨᱠᱮ ᱥᱟᱜᱱᱮᱱ ᱡᱤᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱠᱤᱨᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱨᱠᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱥᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱛᱮᱨᱱᱮ ᱭᱮᱱᱫᱮ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱫ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱠᱟᱛ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱠᱛᱟᱝ ᱛᱮᱠ ᱥᱟᱜᱡᱮᱞᱟᱱ ᱡᱤᱱᱠᱤᱱ ᱫᱤᱠ ᱥᱟᱜ ᱜᱤᱢ ᱵᱤᱠᱟᱯᱥᱚ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱠ ᱛᱮᱜ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱛᱮ ᱪᱚᱞᱟ ᱥᱞᱚᱯ ᱛᱮ ᱥᱤᱯᱤ ᱣᱟᱨᱠᱟᱯ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱞᱚᱯ ᱛᱮ ᱥᱩᱠ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱥᱠᱟᱠᱟᱠ ᱛᱮᱜ ᱠᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱮᱨᱠᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱯᱤ ᱠᱟᱯᱥᱚ ᱛᱤᱥ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱫ ᱥᱠᱟᱠᱟᱠ ᱨᱮ ᱥᱚᱝ ᱡᱩ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱪᱚᱫ ᱱᱮ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱫ ᱠᱟᱠᱨᱮ ᱭᱚ ᱭᱚ ᱠᱩᱡᱮ ᱡᱚ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱜ ᱛᱤᱥ ᱠᱟᱯᱥᱚ ᱛᱮᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱜ ᱯᱟᱭᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱫ ᱠᱟᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱡᱮᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱝ ᱟ ᱪᱚ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱛᱮᱢ ᱵᱟᱡᱮ ᱜᱚᱣᱟ ᱛᱟᱡᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱠ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱜ ᱛᱮᱜ ᱞᱚᱵ ᱥᱩ ᱥᱮᱭᱟ ᱟᱱᱫᱚᱨ ᱡᱚᱠ ᱠᱚ ᱭᱚ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱮᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱟᱭᱨ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱫ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱥ ᱪᱮᱫ ᱫᱤᱜ ᱜᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱡᱚᱨ ᱜᱚᱡᱤ ᱛᱤᱢᱚ ᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱤᱭᱟᱱᱟ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱫ ᱠᱟᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱨᱟᱡᱜᱤ ᱛᱚ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱫ ᱪᱤᱜᱤ ᱠᱟᱛᱟᱜ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱫ ᱭᱚ ᱪᱮᱱ ᱨᱟᱡᱜᱤ ᱨᱮᱡᱮ ᱪᱚ ᱛᱮᱥᱛᱟ ᱵᱟᱡᱜᱤᱨᱮ ᱞᱟᱜ
0: Ri lakso lakso. Ta gergin gilishkan di tukhni tani tukhmir gergin na chonjinar kakakabli maa tiyo tani yang sosu ngi tani yang kakakaran di tiknar nda sosu ngi tala rangga donhtal nda yin yon na ta tarka wengina gichu rangga nyamnyong yin na nda shokan tani kargi lopchik shetab yin na nda sosu ngi tani nara zga zi nyamnyong pansam sopari yon nda chonjina kaptag rangga chik kakakang zga tiknar nda ngu maagur di ngi tani rangga tanglin yi shala yin bapay yon nga nyamnyong ri Dina ti hanchi kikichu, hirkab tig chu, rangin sonja talu chaksam damo zi kikirgi yarngun niwili shawandi shigzig. Dangun chi gyarang lopchan jogo nugu kaptogu yinna nja, yana kaptogu tumar injina kichu, gergin gilihkan di shigni kaptogu yinna nja, ta tarkib kifchag kikirgi shig kichu charchin laka yinna nja, gan tani nar losu ngin tana pegiya shigin jogo yoke. Di jangu, ta kaptogu lopchi shetang, tarkib ki lopchi shetang di chapan jogo gandar yon na, gergin gindazu ngin tani kaptar yinna.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: 다니 랑 또 랑 삐끼 샤완다 라는 그지 라는 그 레칸다 라는 거 양나 라는 그 소정 때 라는 거 크리 조금 간클 너 힌드 모이나요 아 저게 지 소프트 그 셰트베난다 단도 소송이 타네 저게 지 먼저 사와치난다 요 그지 그 다구나 송고노 대전디 대한신이다 그기는 선진아 그쇼 다 되는 거 렌슨데 그 랑자 소원지나라 다 솜정 기긴 그 다 소틀 탑름지 다 저거 그쇼 아 저거 그 소자리리 그 양지 간디난다 그게 지 소수가 가쇼 때 지 고요민들은 와친다는데 선진아 그게 다 소수 등 소자득 다 적은 과거 양나 그게 소자근 고치는 바가 아 다 소죽고 샤와 다소 시그르글리오 쳇삼 디안신인 젠타 젠타가 와르나 시그 지 페지기 차든 조멘타 양 그근 젠타즈 그 그거 다 소마 좀 틀라 소과 양난 젠타드 그 도톰라 소과 다소 시그르글리오 쳇 디 대통 대비진다 다 길긴 간 손진아 그게 솔직 그 탑름도 문자 디젠 그 다 데른 그 랑즈 소운진아라 다 솜정 길긴 그 솔직 탑름 랑 그 솔직 탑론 또 판스나 길긴 판스나 냠줄이 냠타 그긴 페지야 통준 너무 그 감긴 좀다 다 랑즈 다우 고르긴 되나 체랑 손진아다 다와르 길긴 이누 그 솝접 그 냠뇽 땅 젤리 다이땅 라는 그 솝측 그 냠뇽 즈나 다 솝접 그 냠뇽 즈나 다 셰톱 즈나 다 다소소 땅 젤리 다이땅 자친냥 그 남바소 갑다리나 간나
1: 야 라소 라소 아 따따 인디 따코니 소드 따로 디나니 랑지 소원 즈니드 아 슬롬정 그 슬롭투 셰톱 그 땅에 대인 에서나 나 랑그 땅 그 냠뇽도 sagay chungwa chungzu shiadi chusungdi ta mamdang gishkabsu loksum dari loksum di indi maxi gishkab chizgin na narangga chi xoon zanjida maxi gishlo mazgila ta maxi mamdang tongo jambo telam suni chungdi xoo da xlo mamdi chu chungma la ta nga chu sa chan gandang gandzgin na xoo dindi tundila tunsungdi xlo mam mongbo zigla mungir zigda pundam saru meke tehta wazgiri cho loptan dinang la chirta wazgir goni cho chifshib da loptan dinang la yongbari zi wikabsu ᱡᱚᱱᱡᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱥᱚᱜ ᱥᱟᱨᱚ ᱢᱟᱭᱟᱱ ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱢᱨᱟᱝᱟ ᱪᱟᱢᱟᱱ ᱪᱟᱢᱟᱡ ᱫᱟᱨ ᱡᱚᱱᱡᱚ ᱛᱤᱢᱚᱡ ᱜᱮᱛᱞᱚ ᱢᱟᱢᱟᱱ ᱥᱚᱵᱫᱚ ᱛᱮᱥᱛᱟᱣᱨᱮ ᱫᱚ ᱛᱮᱥᱚᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱮᱛᱚ ᱪᱤᱯᱥᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱭᱚᱱ ᱪᱮᱛᱚ ᱞᱟᱜᱟ ᱢᱩᱭᱨ ᱪᱤᱜᱤᱭᱚ ᱛᱮᱫᱟᱝ ᱯᱮᱱᱤᱝ ᱤᱨ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱠᱟᱥ ᱴᱚᱯᱤᱠᱟᱥ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱢ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱᱤ ᱪᱚ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱜᱚᱡ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱮᱥᱜᱤ ᱜᱚᱭ ᱠᱟᱥ ᱛᱟᱝᱵᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱞᱮᱯᱥᱟᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱛᱨᱮ ᱡᱤ ᱪᱚᱱᱫᱤ ᱪᱚᱱᱫᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱥᱞᱚᱯ ᱠᱚ ᱪᱤᱜᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱢ ᱛᱮᱞᱟᱱ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱞᱤᱛ ᱱᱟᱞᱟᱱ ᱪᱟᱨᱡᱤᱜ ᱪᱤᱠ ᱥᱞᱚᱯ ᱠᱚᱢ ᱫᱤᱱᱟ ᱜᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱛᱜ ᱥᱞᱚᱯ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱭᱟᱝ ᱫᱤᱜ ᱞᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱤᱜ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱠᱩᱥ ᱥᱟᱫᱤ ᱪᱚᱱᱫᱤ ᱚᱭ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱭ ᱠᱤ ᱥᱞᱚᱯ ᱛᱮ ᱱᱤᱡ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱩᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱟ ᱯᱟ ᱪᱤᱨᱛᱟᱨ ᱡᱚᱢ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱤᱥ ᱛᱟᱣᱟ ᱥᱟᱜᱡᱤ ᱪᱤᱨᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱮ ᱪᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚ ᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱛᱜ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱚ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱩᱜᱤᱨ ᱱᱤ ᱵᱚᱨ ᱫᱟ ᱤᱠ ᱛᱚᱜᱟᱱ ᱜᱚ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟ ᱞᱚᱢ ᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱵ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱫ ᱢᱟ ᱛᱚᱵ ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱭᱟᱛ ᱥᱟᱢ ᱱᱟᱥ ᱜᱤ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱭᱟᱛ ᱱᱩ ᱥᱮᱢ ᱱᱟ ᱥᱟᱢ ᱱᱚ ᱜᱚᱛᱚ ᱪᱟᱢᱵᱚ ᱤᱠ ᱛᱚᱜᱟᱱ ᱜᱚᱫ ᱢᱟ ᱛᱚᱵ ᱱᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱚ ᱪᱟᱢᱵᱚ ᱤᱱᱤ ᱪᱚᱱᱛᱤ ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱛᱜ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱞᱚᱢ ᱢᱟ ᱨᱮ ᱞᱟ ᱢᱚᱥᱴᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱵᱟᱜ ᱜᱚᱱᱤ ᱪᱚᱨᱟᱝ ᱜᱟᱛᱜ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱢᱚᱥᱴᱚ ᱫᱤᱭᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱥᱴᱚ ᱡᱤ ᱯᱤ ᱠᱟᱥ ᱭᱟᱝ ᱟᱜᱵᱟᱨ ᱫᱟᱝ ᱤᱱ ᱛᱚᱛᱚᱜ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟᱥᱚ ᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱜᱤᱡᱜᱤᱱᱟ ᱫᱤᱱᱤ ᱱᱟᱪᱚ ᱢᱟᱝ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱛᱩᱜᱤᱱᱟ ᱥᱚᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱥ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱟᱪᱚ ᱚᱯᱟᱡ ᱜᱤᱱᱤ ᱠᱟᱥ ᱥᱟᱢᱟᱞᱟ ᱨᱤ ᱚᱯᱟᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱱᱮ ᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱮᱯᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱮᱥᱭᱟ ᱡᱩᱡᱟᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱮᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱪᱩᱢᱭᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱚ ᱥᱮᱨᱟᱢ ᱛᱟᱪᱤ ᱡᱮᱱᱮ ᱱᱮᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱤ ᱜᱢᱤᱱᱟ ᱪᱮᱥ ᱜᱤᱱᱮ ᱫᱮ ᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱥᱢᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱭᱚᱨ ᱜᱚᱡᱮ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱠᱤᱱ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱱᱫᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱫᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱮᱫᱟ ᱛᱮ ᱡᱤ ᱛᱚᱜᱟᱱ ᱜᱚᱫ ᱢᱟᱛᱷᱟᱜ ᱱᱤ ᱞᱟᱱ ᱛᱮ ᱜᱤᱱᱟ ᱱᱤᱜ ᱛᱚᱜ ᱱᱤ ᱢᱟᱨ ᱥᱭᱟᱠ ᱠᱟᱵᱡᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱨᱥ ᱢᱚᱫᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱪᱤᱠ ᱡᱟᱢ ᱠᱟᱨᱟᱝᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱥᱞᱚᱯ ᱪᱩᱠ ᱥᱠᱟᱯᱛᱮ ᱥᱞᱚᱯ ᱪᱩᱠ ᱱᱩᱥ ᱥᱟᱯᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱨᱟᱝ ᱱᱤᱛ ᱢᱚᱯᱴᱚᱛ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱪᱟᱨᱡ ᱛᱮ ᱛᱮᱜ ᱩᱴᱨᱚᱵ ᱪᱷᱟᱛᱟᱯ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱚᱵ ᱠᱚᱨᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱨ ᱪᱷᱟᱜ ᱡᱩᱵ ᱡᱚᱭᱮᱱ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱮᱝ ᱫᱤᱜ ᱡᱮᱛᱟ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱢ ᱪᱩᱛᱤ ᱛᱤᱥ ᱡᱤᱜ ᱥᱚᱱᱤ ᱡᱟᱝᱠᱚᱨ ᱛᱟᱠ ᱪᱤᱜᱟᱨ ᱡᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱡᱚᱨ ᱥᱞᱚᱯ ᱪᱷᱟᱛᱤ ᱜᱚᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱮ ᱥᱞᱚᱯ ᱪᱷᱟᱱ ᱜᱚᱱ ᱡᱚᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥ ᱱᱮ ᱪᱤᱜ ᱥᱞᱟᱯ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱛ ᱠᱷᱟᱢᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱥᱞᱟᱯ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱛ ᱠᱷᱟᱢᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱥᱚ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱜᱡ ᱜᱟᱯ ᱪᱩᱡᱤᱨ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱟᱣᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱩᱡᱤᱨ ᱡᱟᱣ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱢᱟᱝ ᱜᱟᱡ ᱜᱟ ᱡᱟᱝᱜᱟᱨᱮ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱩᱡᱤᱨ ᱡᱟᱣ ᱭᱟᱝ ᱥᱞᱚᱯ ᱠᱩᱡᱤ ᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱨᱤ ᱪᱩᱡᱤᱨ ᱡᱟᱣ ᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱥᱚᱣᱚᱛ ᱛᱮᱜᱚ ᱫᱟᱠ ᱛᱮ ᱢᱩᱥᱩ ᱡᱚᱝ ᱮ ᱪᱚᱝᱫᱟ ᱟᱥᱚ ᱢᱟᱨᱪᱤᱠ ᱥᱮᱨᱤᱭᱚᱱ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱞᱟᱠᱥᱤ ᱡᱚᱢᱵᱤ ᱨᱚᱣᱟᱱ ᱯᱚᱛᱚ ᱱᱤᱵᱟᱨ ᱛᱮᱜ ᱱᱟᱥᱚ ᱫᱟᱠ ᱠᱚ ᱢᱟᱝᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱣᱟ ᱡᱚᱝ ᱮ ᱪᱚᱝᱫᱟ ᱛᱚᱫᱟᱝ ᱛᱚ ᱡᱚᱝ ᱪᱚ ᱢᱟᱡᱤᱠ ᱛᱮᱜ ᱢᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱛᱮᱜ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱞᱟ lobchungur kapsa khyabar yokko tiga lobman gazigdi tiga sirtoni kyo na lakshi jombi gwaanpo tiga ibar da nga suga dayin na daga yangma na tiga mayin ba nga chige tas zawaq chigdang dom chigir nyi zeta tas zawaq chigo tiga tiga nga chige chigjir ga thomasan bota zingga songo mzad nugu saa tari tiga mayin ka tiga dom chigir nyi gadeg chigdi ta yangjin rubiq dorje zingga lakshi jombi gwaanpo tiga nyi tiga kevshi songrub jamso zingga dani dom chigir kodo kyo tiga nyi gadeg nga jirubjik kirtanga nga chige lob chunga nangna yo kyo tiga manshuk tiga kevshi songrub jamso zingga tāndīni dōmchik kōtō kio tēn rāzirē tēg māyīm pāga tēng nga chēr jimbirta tēg yāng nga chēgē yār chīg wēf kio kō chē tāng yāng jimbirta yāng gō chū gā nāng nā yāng chōng zō chēr wē tāng yāng jīn tūpīr dō chē thāqbir tāng nga chō gōndī lōg sō tā sō yā nāng yāng jīn tūpīr dō chē tāng ndī dāqshir jōng jīg wā chē tā yā nāng yī dāqchūt жипчи тамбагым мамтайын тэгэ цамаа гясав яв жипчи жирнал сити лобман гаригын дон мотып ти тимо яга лагбарса ян тантэнин чиридин тамны чин дит дит тамбай нинг нёман дирида дири чунгада консола ноншик сабовча ди чунгада дириви капсы ян клонтэн гэ лобматела чони чунгада сабчын хажин гэ чемаа васна чемаа сонди ян пьесон де тансан ян гацола левша тэ чон манг мэнэн зэвотэ ноншик тат мэнэн зэвотэ ти сонди чонс кэ ян бугур гонэ нэчэ гэ адафт нзамтри чунгада лакши джомбэ гонбод лобчун ди лобчун не яра хамам дна периун кэ капсы амачи кэ капсы нипэр тэ тэ нэчэ дон нзамтэ чэ пери чунгада нэчэ там нзэнжа гэ нэ ян дага лорум гумэ тэ дин дага тэсо нипэр дэн зэн гэ чо ти ланд гэ нар гэ тэ гэн чаржи там ковд гэ нана ю ти сонди тэ гэ лобчун тэ сори лобчун तो सो येना तांगचे निपर तर जत को चार्ज तर तर ठग गुआरे ता येना या तिन के चोंज सुपर गयेवा ता लो जी सोप्सन गैस येना के कंस्टर जंग तांगचे इन दिनार जाई के नाना या योन ओ या तनी जाई के न जों सर दे या ओई के ना सर जर योन या जर नु नाना या चोंज जर नु नाना या चंग चोंज खसा मो इन जे ता या कम मक्सर नो जर नु नाना जर चिन या चोंज काला कंसन न्यों जे मिरे योन नंबा या तिर को लोन मलों को लोन चिर गो को तो सो ना ना चुन चोंज के चोंज थमनी जे जो जों का खरी या चोंज द रे तो तो तंबो नि बर दंगा चो माई जाई ला नि बर तक छि स्टार को टोन गो जे तनी जाई के तंग शेर यों दा या तक सोप छ दिर को जे छि त तंद न क्यार दु गो ना बान रे दे दा दो ना तक तिन ग सो न ग सो द छि रे दा लप छन जाई के न ग छि ना मेन द ma su wukkini yang chigi chungzit suwa dang katak nina ga lopchun ga da lopchun da tozo tsangma xuu nang suwa yi tudin jo jo nambas tangni ya ma chigi kapsu timon ra yin di sondi ma ni ga kapsu la ton bi kapsu ta simchi pi tsawa da lo la ngibar dan zin ji tang daga lopman da so tsongma la sum zhiga nipa da jef jeti ngibar da tanga chan nin to ga namba tib di yin jo ji yin na chungzit ni tam zi jo lef shan da so tsongma la ya kakar chi ji tena zato di yi chungda zankur ri ga nang nipar da zato ri dan jib go ji dani zato da son zivi kapsi yin na chungzit rinka sim na zan yo ji ta mar yik tukang go ji wo da so da di yi chungda chak ji tib go kapsi ga chungda diri di das lom ji gus kawa toni kapsi tam ngin di das lom ji gus kawa toni kapsi tam ngin chak ji da da so dri kapsi ga da da dang di zani ni shukdum ga namba yin an nipar da shukdum go ji dang lom ji ga toni chungda yar nang gam jik dang gan nang gam jik da so la chadi yon kapsi shukdum yi chungda dar ma ma chun chak ji bji yaka chuk mu yir bji yaka da na chun chak ji nda gang man jibzi gang jibzi तो सोंग नी परतर गोचिन जन रस्तम ते इन नजाग जातो पे इन नजाग तिनी पाद से टों से दिचो दा मागनी कस टेस्टा व से चितम मक्सम ना तुम बी कस तिन मिचि के चिरे दिना ता ता तंगसंग इन न चिगन दि छिगन रि बिसि फ्याग स्कोर द तो मोमाय ना सख त चिगन चि करचिन बो इन न रे दा न्यांग न स्कोर द दा ता तंगसंग इन ना तो सो लापचिन के नंग ने लोपचिन ग अंगु न मा जिग मा क तो शख सो न मा जिग चो दा тошя чонсэд чэрэвдэна хэртэнг гяп гомж чиг тахлык гэн набада чиг зэтэк гэн набари жиг ок яна ян ацотм нибрд додо танды ни чонда рангэтэг рангдон тарды чонда цуолдын чонс нянг гэр дон чиг янанда тосо чома улалин гэда тосо чома чиг гэрчинан зэн гэдан дэни сишэн замдэр бер гэдан дим чүтэй лома чиг чонс чэтэн ни чонда максимла тумби тарс сомиг лэг боптина тесо яна ацо локтала ян титэп чиг перио паре титэп тэян ngarang ge chig mushab ge chig snitch ge na bai chong da tidip de yang tem chang ta cho yin na tem chang get ge thon yo tin ngaf ber ge dang tin ge chig pir dob shong wan ge yin na yang ya ra ngo tu di chi chong da sak shog dang dang ge sak shog de na sak ber de na de cho dang ta tidip jam bi tong jin pir che di chong ti ri chong tim chu di lap chen jam ba de ge che ta na ta ga lang jong ge na ni khor na ge yin ge dang dang ge chi ni pir da star go ju lan ge da na ti ge che Maruf Zedong yinan zhaga, tanga zir dukir chimo gyad yinan zhaga. Ta tatsu yinan zhi kaduk tang, zhuwa manyin bi tadang, tiga chiri zina, tanga zir chardang kir sumbabu zina, nga zir turgin kir sumbabu, ta tangsang yinan zhi sumbabu mangbu gu tiga pecha yukpari ta. Te chuo zhi mayin baga zhiga chardang kir huichia tang, chardang kir sumbabu la di huichia tang, zhiga didib kir yinan zhi chungzi zhigir, nyandag yon naga zhiga sumi ngushtu zhidi kiong, tatsu pehluk tang, ta flabshi gu shkong, flabshi huichia korga, tatsu ᱡᱚᱥᱚᱠᱥᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱪᱮᱫ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱛᱟᱠᱚᱭᱞᱚᱜ ᱤᱠᱟᱱᱡᱤᱜ ᱡᱮ ᱛᱚᱠᱥᱚ ᱡᱚᱱ ᱡᱚᱡᱮ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱢᱫᱚᱨ ᱛᱮᱭᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱛᱮ ᱪᱤᱨᱤᱫᱟ ᱢᱟᱨᱪᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱭᱟᱨ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱚᱱᱫᱤ ᱡᱚᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱞᱚᱜ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱚ ᱡᱚᱱ ᱪᱚᱱᱫᱟ ᱤᱜᱤᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱨᱤᱫᱤᱱᱟ ᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱢᱪᱩ ᱠᱷᱞᱚᱜ ᱫᱚᱢ ᱥᱮ ᱯᱤᱥ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱛᱮ ᱠᱷᱞᱚᱜ ᱫᱟᱱᱟ ᱡᱟ ᱛᱟᱜ ᱵᱩᱨᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱨᱪᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱱᱤᱵᱟᱨ ᱫᱟ ᱛᱚᱵ ᱡᱚᱱ ᱪᱚᱱ ᱛᱟᱛᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱛᱤ ᱪᱚᱱᱡᱚ ᱠᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱥᱚᱢ ᱡᱩᱜᱤᱱᱤ ᱵᱟᱫᱟ ᱢᱟᱥᱢ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱟ ᱥᱞᱟᱥᱤ ᱠᱷᱚᱭ ᱪᱟᱨᱛᱟ ᱡᱮ ᱛᱤ ᱨᱮᱢ ᱵᱟᱜᱤᱥᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱜᱤᱥ ᱠᱟᱪᱟᱱ ᱫᱟᱫᱟᱝ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟᱠᱚ ᱴᱨᱚᱣᱟᱱ ᱫᱟᱫᱟ ᱠᱟᱜᱡᱤᱜᱤ ᱪᱩᱨᱩᱭᱚᱱᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱠᱟᱥᱛᱟᱨᱤ ᱪᱚᱱ ᱡᱚᱡᱮ ᱫᱚ ᱥᱤᱱᱫᱟᱱᱮ ᱪᱮᱱ ᱠᱟᱨᱪᱤᱢ ᱵᱚᱨᱤ ᱥᱟᱢᱡᱮᱛ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱚ ᱛᱮᱜ

ये टोस्टेम अलो अलो लोर ये को समर्थक अलो अर्गी मस अची ची समर्थक अलो अर्गी फिलन अरी ता थुक रमर अचमो अकर जोन एगा ता मस अली मसो अगी सोक अची कंच न खाब इन थो अर्गन रग अची ता खाब इन खोर गस असी जान इची ता नाब ची मे थो